0: चुके दीवार।
1: रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 23।
2: License number 10394.
3: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भुलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
4: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 647-446-1616। उमरप्रीत चावला

जी शुक्र दाते दा सानू करना चाहिए। तो आओ फिर एक बड़ा शानदार गीत सुनते हैं, शुक्र दाते आ। तो प्रभ गिल दा गीत गाया होया, तो आओ फिर गीत नू करिए इंजॉय। प्रोग्राम सर्ब रेडियो।

क्या बात है, बड़ा शानदार गीत यार, मजा आ गया सुन के। ते मैं लाइन सुन रहा सी विच, ते कहंदे है मोरां वर्गी तोरां तुरदी हिरनी वर्गी कुड़िए नी। ते मैं सोच रहा सी मोरां वर्गी तोरां तोर तुर रही है ते हिरनी वर्गी, ते दिमाग दे विच कन्फ्यूजन बड़ी हो गई भी यार पता नहीं केड़े साहब दी किदां दी कुड़ी दी गल कर रहा।

0: देखने के लिए आपको optical.ca में जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1990 पर कॉल कीजिए 9054567733। Alpha Optical, your vision is your business.
1: Since I last seen you, it's 9 days ago.
2: We didn't have good news here. When COVID happened,
1: disaster.
2: Everyone had a rock.
3: You can now make these in your backyard that you couldn't get.
4: लो जी एक बार फिर अपना टेस्ट भी गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही का सिफ्ट कर लगे हैं, जरा सुन के सोने हो।
5: Showing your property and

0: top lattes abroad at Dove Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: Sarvare Prabh Antaryami Nanak Road Pakari Prabh Swami Gauri Mata Mahima Ram Pita Prabh Mere Mahinirgun Sabgur Tere Raha Panch Bekha Di Ek Gariba Raka Pada Tanhari Khed Kar Hai Har Bahut Santav Hai Aya Saran Tuhare कर कर हारियो अनेक पाव पाती छोटे कदमों नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया जीत ले ओए महाबेखाती सहज सोहेली बारी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी कर स्नान सिमर प्रभ अपना

सुख मंगल कल्याण सहायकम प्रभु के चरण निहारया राधन हारा राखियो बालक सतगुर नाम उतारया उबरे सतगुर की शरणाई जाकी सेव न व्यक्ति जाई रहा कर्म सुख बाहर पर सुख।

रोग सपना से तब अपने कृपा दानी आज पहर अनाथो स्वामी पूरन काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राख ले हो पाई मेरे को प्रभु आगे अरदास जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा पेटियो मिटियो सगले अंदेसा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला रूप मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख विदाता रहाओ आनंद विनोद मंगल गुण गाओ गुरु नानक भय दयाला

व्यापी सब संसार उबारिया पाता प्रभ कृपा धारी अपना बिरध समारिया कोई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुणगावो मन तन देह सुखाली रहाओ पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मह किसका परभाषा बख्श ले सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदासा सुर महला पंजवा बख्शिया पार धर्म परमेश्वर सगले दोपिदारे गुर पूरे की सरणी उभरे कागज सगल सवारे हर जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारिया सब गुरपुरे अपनी कृपा धारे रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया बड़ी बड़ियाई नानक करते की साथ सबद सत पाखिया सूरत महला पंजवा भय कृपाल स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुर ताप गवाया भाई ठान पई संसार अपने जी जंत आपे राखी जमहे कियो हटतार हर के चरण हृदय उड़तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सैनी उबरे भाई जिन रचिया सब कोई करण का

संतो हर हर नाम ध्याई, सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरा नाम गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभु भय दयाला, दुख मिटया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उधरिया सब संसारो। मेरा सतगुर खवाला होआ, काज कृपा प्रभात तेरा क्या, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ।

0: खुशियाँ ले आऊं बाबा नाम का ये वो दुनिया।
1: श्री संकट नाशन गणेश भक्तवासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामा।

0: मां रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां, इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
1: सूर्य कवच स्तोत्र।
2: अस्य श्री आदित्यवच स्तोत्र महामंत्रस्य स्तवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः देवता कृतं सूदं शक्तिः।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को है। तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया। और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैक यार्ड में बारबेक्यू चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इन मॉडल पर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में, आप उनकी स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा। अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। और उनका आप नंबर लिख लीजिए, 416-524-7004, 416-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर लीजिए और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं HK मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कोरियन डिपो अब आपके लिए गोर रोड पर मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप मास्टर कोरियन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ऑफ रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 रोड मिसिस आगा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो, 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115-416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सारियों।

Jawaharlal Nehru's inaugural address, August 14, 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of the history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and grandeur of her success and failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of the quest, forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of misfortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of the freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this soul. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons us now. The future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance, and poverty and disease, and inequality of opportunity. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace is said to be indivisible. So is freedom. So is prosperity now. And also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India, where all her children may dwell. The appointed day has come, the day appointed by destiny, and India stands forth again. After long slumber and struggle, awake, vital, free, and independent, the past clings on to us.
still in some measures, and we have to do much before we redeem the pledge we have so often taken. So, end of the speech. So, today I am able to read it. I hope you like it. So, aiye program ko lekar ke aage badhte hain. So, ab aapko agar aap apne ghar mein fridge stove washer dryer badhiya quality ka leke aana chahte ho, to aapko jana hoga Top Choice Electronics. Aapko kisi ke liye bhi gift khareedna chahte ho badhiya sa kitchen gadgets ka, ya fir aapne कोई बैकयार्ड के लिए अपने अब बारबेक्यूज खरीदने हैं, सोफ़ास खरीदने हैं, तो ये आपको सारा सामान बहुत बढ़िया कीमत पे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है ब्रैम्पटन में. दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो. और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए. 905-799-0045 पे तो आप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो. और अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं. तो और जानकारी के लिए आप 416-524-7004 पर कॉल कीजिए. 416-524-6704 एच के मूवर्स. न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया में मौजूद है. आपने किसी तरह का भी लाइव कुकिंग करवानी है तो आप उनको कॉल कीजिएगा. 905-814-1703-905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो. और अब अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हो, आपको पुलिसिंग का काम करवाना है, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलेक्शन डिपू अब आपके लिए गोर रोड पे लंदन में मौजूद है. आपने किसी तरह की भी आपने कलेक्शन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देना है, आप मास्टर कलेक्शन डिपू डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो. तो अब आपके लिए बड़ा देशभक्ति वाला गीत सुनाएंगे. तो उम्मीद रखूंगी कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा. तो लेट्स ये जो गाना है मेरे ख्याल आपको, पर हमारा प्रोग्राम सबसे पहले आता है ना सुबह में, तो आपके लिए ये जो गाना है, ये आपने बढ़िया बढ़िया गाने जो है आज़ादी वाले, वो आपको मैं हमारे प्रोग्राम से ही सुना देती हूँ. फिर पूरा दिन और कोई लोग वक्त बाद में उनके वो आते हैं, तो सबसे पहले हमें मौका मिलता है आपको सुनाने का. सो लेट्स गो टू दिस फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग.

0: सारे फूलों की राहों में सारे फूलों की यहाँ सावन यहाँ का सावन बालों में खिलती है कलियां सालों में।
1: ये जो गाना है विजयंती माला दिलीप कुमार 1957 नया दौर फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से यह गाना है, लेट्स गो टू
2: भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत दिखलाई तारों भारत तो यूं चांद जाना मिलता धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जब कला अपना भारत वो भारत है नीचे संसार चला संसार चला और बढ़ा जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े फूले बसंती देव का

यहाँ तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए

अच्छा तो एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली अगर किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो हैं दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोग अगर ये गाना लता जी का नाम अब प्ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत का भला, इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

प्रकाशनी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ज्वाही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरां त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानो त्वं कुलदेवी नमोऽस्तु ते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवम् त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोऽहम् आढ्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मङ्गलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम्।

0: சொல்லியோ
1: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन से जो G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबिको मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165

0: पैंट्स पर और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद, और आप सभी को हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद रखती हूँ कि आपने भी हर शहर में, यहाँ पे कनाडा में इंडिया इंडिपेंडेंस डे सभी मंदिरों में तो मनाया जा रहा है और हर जगह कोई सेलिब्रेशन जरूर हो रही है, तो आप भी जरूर उसमें शामिल हो जाइए और अपनी जो देशभक्ति है उसको थोड़ा जागृत करिए।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। जिनको ये मालूम नहीं हो शायद मीनिंग वंदे मातरम का मतलब हमारी मातृ माँ को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो यही इसका मतलब है। तो मैंने कल के प्रोग्राम में आधा जो 15 अगस्त 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली स्पीच थी उसको मैंने आधा कहा था कल, तो आधा आज मैं कहूँगी। तो आइए पहले आपको ये बड़ा प्यारा सा धुन सुनाते हैं।
1: प्रोफेसर छपाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं।

जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी, बढ़िया आप बारबेक्यूज, आउटडोर फर्नीचर या फिर अपने घर का फर्नीचर वन ऑफ ए काइंड बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस पे लेना है, राखी की स्पेशल सेल आपका फायदा उठाइए। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए topchoiceelectronics.com पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने उनकी जो लोकेशन है आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन को आपने टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सभी को राखी की और इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं उनके पूरे स्टाफ की तरफ से, अब मास्टर कोलिजन दीपू की तरफ से, स्काई डोम की तरफ से। अगर आपने बढ़िया अपना कोलिजन का काम करवाना है, अब लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपकी खुशी की खबर आपके लिए ये है कि मास्टर कोलिजन दीपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में। तो आप वहाँ पे जाइए, अपनी कार वेंट आपको आपको ले बना के देंगे। masterclinicdepot.com पर जाकर आप और जानकारियाँ ले लीजिए। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं और उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुँचाते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए 416-524-8604 तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। और आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 905-625-0055 905-625-0055। आपने

दीजिए, और ये जो अपने फॉरएवर जैसे कि ग्रीन सॉन्ग है जो, उनको सुनिएगा आप, सुनिएगा ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये कुमार और सुनिएगा।

0: नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी
1: छोड़ो कहीं बातें कहीं बात पुरानी।

कितने तारीफ महल है और बनाने, कितने ही अजंता हमको सजाने, अभी पलटना है।

0: नई उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तान
1: हिंदुस्तानी
0: हम हिंदुस्तानी।

0: बना भगवान बनाए राम की इस धरती को गौतम की भूमि को सब लोगों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंग अब है नई जान
1: जी हाँ हम हिंदुस्तानी। तो अब आपके साथ में जो आधी जैसे मैंने कहा था कि आधी जो जवाहरलाल नेहरू जी की कायस्थ वाली उन्होंने पहली अगस्त 14, 1947 में उन्होंने ये पहली स्पीच बोली थी तो उसी को मैं दोहराने जा रही हूँ। Yet the turning point is past and history begins anew for us. The history which we shall live and act and others will write about. It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East. A new hope comes into being.

0: A vision long cherished materialized, may the star never set and that hope never be betrayed. We rejoice in that freedom, even though clouds surround us, and many of our people are sorrow-stricken and difficult problems encompass us. But freedom brings responsibilities and burdens, and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people. On this day, our first thought goes to the architect of this freedom, the father of our nation, who, embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message, but not only we, but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their hearts of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courage and humility. We shall never allow the torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. Our next thoughts must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who, without praise or reward, have served India even unto death. We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us, whatever may happen, and we shall be sharers in their good or ill fortune alike. The future beckons to us. Whither do we go and what shall be our endeavor? To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India, to fight and end poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. So we have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledges in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard, all of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India, with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. To the nations and peoples of the world, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom, and democracy. And to India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal, and the ever-new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service. Quote unquote. So, ye the unki Jawaharlal Nehru ji ki speech India ke Independence Day ke din pehli baar August 14, 1947 ko. तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं. उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी. अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, आपको बढ़िया बढ़िया टीवी चाहिए, लेटेस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आउटडोर आपको बारबेक्यू चाहिए, सोफा बढ़िया सा चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंगेरपुर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोवाल पे है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी जो राखी स्पेशल सेल है वो देखिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करिएगा। जी हाँ, तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको कृष्णा वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना बेचना है तो आप निश्चित फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1207, 519-546-1260 पर आप कॉल कर सकते हो। और अब आपने किसी किस्म की भी आपको आपने कलीजन का काम करवाना हो तो आप वहाँ पे चाहिएगा, आप किसी तरह का भी मास्टर कलीजन डिपो आपके लिए खुशी की खबर, अब लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। तो मास्टर कलीजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो और आपका कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। बहुत सालों का उनका तजुर्बा है।
1: सुबह ने इस चैनल पर की है, सुनिए ये कहानी और कुछ यादें।
0: मास्टर कलीजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, तो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा ही बना देते हैं। अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में आपके मदद करते हैं, तो आप उनको कॉल कीजिए, आज ही अपना ट्रक बुक कीजिए, 416-524-4416-524-6704। तो लेट्स गो टू

जो संभालते, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल।

रखा है ये चिराग शहीदों ने पाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दांव पेच से रखना नवाता, दुनिया के दांव पेच से रखना नवाता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न देखो ये तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।

0: तुम हर कदम उठा नजरा देख भाल के, देख तो रखना मेरे
1: बच्चों। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संवार घर संसार, और मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। और आप सभी को एक बार फिर से इस इंडिया की इंडिपेंडेंस 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एंजॉय कीजिएगा, जो भी आपके शहर में एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे जरूर कोशिश करिए जाने की, अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। So, we will continue the celebration with you through this हवा की जो लहरें हैं उनके ज़रिए हम आपके रूबरू होते हैं, तो इसी के ज़रिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।

ये जो गाना है इसको हमें अपने मन में रखने की जरूरत है आगे फ्यूचर के लिए, और हमेशा हमें ये सोच अपने आप की बनानी चाहिए, सोचना चाहिए आने वाले समय के लिए।

जा सकते नहीं, माता जी को हर बिल बिठा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, ये दौलत पाई है, मुस्कुरा खाई थी मुझे अपने गोलियां, अपने गोलियां, इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, आजादी को हम हर

0: कोई शोला हवा के सामने,
1: शोला हवा के सामने
0: लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई,
1: लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई,
0: रुक नहीं सकता हमारे एकता के सामने, हम पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं,
2: हम हर
0: किस गिरा
2: सकते नहीं,
0: सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते

0: की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी बदलते जाएंगे,
1: बदलते जाएंगे।
0: अगर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा।

से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

सिमर सिमर सिमर जन सोई, नानक करम परापत होई। जिन जपिया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार।

0: शुरू हो गए ने ते काफी तेज ने जी, की खास रिपोर्ट है?
1: देखो, एक गल तो बड़ी साफ है, जदों तो चाहे ज्ञानी हरप्रीत होना वाला अकाली दल, चाहे वारस पंजाब वाला अकाली दल,
0: जी
1: ये दोवें अकाली दल सुखबीर सिंह बादल दे पार्टी नूं सूत नहीं बैठते, एक दूजे दे विरोधी है। सुखबीर सिंह बादल नूं ओ माड़ा कहिंदे ते सुखबीर सिंह बादल हुणी उहनां नूं माड़ा आखदे। सुखबीर सिंह बादल दा जिहड़ा सियासी धड़ा, ओह कहिंदे असीं असली अकाली दल हां, ते दूजे कहिंदे असल विच असीं असली हां ते कब्जा करके बैठा है। ते ये फैसला करना हुंदा वोटरां ने, असीं तुसीं इत्थे बहुता वड्डा फैसला नहीं दे सकते। असल विच वोटर ही फैसला करदे आ कि असली कौन ते नकली कौन है। हुण वारस पंजाब दी जथेबंदी पंजाब दे विच सियासी तौर ते रुपिंदर जी बीते समय च भोरा उपर उठी, इस विच कोई शक नहीं।
0: जी
1: चार बंदे भी उहनां नाल जुड़े है, सियासी इकट्ठ भी कीते है। आ थोड़े दिन पहला असी देखिया कि उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर जाके प्रदर्शन करने च कामयाब रहे। दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल वाला दल है, चलो बिच विचाले वो जिन्हों आप आखते कि सियासी तौर पर चुस्त फुरत हो जाता, एक्टिव हो जाता, फिर ढिला भी पै जाता है। आ दिनों च सुखबीर सिंह बादल के बांह से सट काहदी लगी, अकाली दल ने सियासी शब्दों दी नेरियां लियांदियां हुई है। सुखबीर सिंह बादल से 150 बांह से 150 टांका लग गया, यही अपने आप च दस दस के लीडर पता नहीं की कहना चाहते है। बीबा हरसिमरत कौर कहती कि 150 टांका लग गया इतने, ते किरच दे नाल बांह ते आर पार कर दिता सी, सर्जरी हुई है, हुण छुट्टी हुई है। मैं बीते कल भी जिक्र किया सी कि इतों के सियासी लीडर इदां दे है कि निक्की निक्की गलत का वड्डा कई बार लाहा लै जांदे। हालांकि चलो असीं नहीं कहने कि किसी ते भावें माड़ी जी सट भी लगे, माड़ी है, गुरु घर दे विच हमला किसी ते भी नहीं होना चाहिए, गुरु घर की कितने भी नहीं होना चाहिए। सुखबीर सिंह ते होया हमला निंदण योग है, परंतु उस हमले के अगे ते पिछे जिहड़ी सियासत है, अगे पिछे तो भाव है कि जिन्हां ने किया सानू नहीं पता कि वह जसपाल सिंह ने क्यों किया, उहदे मन विच की सी, क्योंकि ना तो जसपाल सिंह का जे कोई बयान आया, ना महाराष्ट्र की पुलिस ने अधिकारित तौर पर कोई पुष्टि की थी कि वह जसपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने क्यों सुखबीर सिंह बादल दे यह सट चुट मारी है।
0: जी
1: परंतु दूजे पासे जिहड़ी सियासत है, दूजे पासे सियासत बीबा हरसिमरत कौर कहिंदे आ कि 106 साल पुरानी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, उहनूं खत्म करन दी साजिश रची जा रही है, उत्ते विरोधी पार्टियां हमले करा रही हैं। पार्टी आ सुखबीर बादल ते होए हमले नूं विरोधी धिरां दा हमला दस्सिया है। और थोड़े दिन पहला जिदां सुखबीर सिंह बादल ते हमला होया, आम आदमी पार्टी ने जिथे थोड़ी जी निंदा कीती सी उहनां दे इक स्पोकमैन ने, उत्थे नाल ही उन्होंने यह भी कह दिता कि भाई इतने बेअदबियां दा मनां विच लोकां दे रोस है, वह भी एक कारण हो सकता है, इस करके अकाली दल नूं यह गल समझनी पएगी। हुण हरसिमरत कौर ने जिथे अज, क्योंकि अकाली दल ने अज एक वड्डी रैली की गुरु हर सहाय विखे,
0: जी
1: उस रैली नूं नाम दिता पंजाब बचाओ रैली। वैसे पंजाब बचाओ रैलियां कई रखियां ने हुण अकाली दल ने, अगले दिनां च ना बड़ा पंजाब का फिक्र हुण अकाली दल नूं पिया, कहिंदे जी असीं पंजाब बचाउणा है। जदों बचाउण दा वेला सी उदों दोहां हत्थां दे नाल लुट्टिया, हुण जदों आपणे कोल नहीं रहा ते हुण कहिंदे असीं पंजाब बचाउणा आ। गुरु हर सहाय विखे पंजाब बचाओ रैली कीती अकाली दल, बरदेव सिंह नोनी मान की अगवाई च कीती है। उत्थे हरसिमरत कौर बोलण गए क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ते हस्पताल च भर्ती सी, आ 2 घंटे पहला छुट्टी मिली है। उत्थे बीबा हरसिमरत कौर ने भाषण किया, अकाली दल दीआं सिफतां कीतीआं, अपने सोहरा साहब दीआं सिफतां कीतीआं, सुखबीर सिंह बादल ते लगी सट दे जख्मां नूं लोकां ने दस्सिया कि भाई 150 टांके लग गए आ, और इत्थे कहिंदे साडी पार्टी नूं धर्म दे नां ते बदनाम कर रहे आ विरोधी धिरां। श्रोमणी अकाली दल ना डरिया ना डरेगा। और दूजा जिहड़ा उन्होंने बिना नाम लै कहे कि इत्थे कुछ लोग इहो जिहे आ जिहड़े धर्म दे नां ते लोकां नूं गुमराह कर रहे आ, जिहड़े बाणा पा के एजेंसियां लई काम कर रहे आ, ना तां नहीं उन्होंने किसी दा लिया। इवें आपां 2 दिन 3 दिन पिछे चले जाइए, भाई राजोआणा ने चिट्ठी लिखी से अकाल तख्त साहब के जथेदार, नाम उन्होंने भी नहीं किसी का लिया सी। उन्होंने भी वो चिट्ठी में लिखे शब्द बड़ा सीधा संकेत सी कि वह दीप सिद्धू नूं की आख रहे सी ते अमृतपाल नूं की आख रहे सी। इस विच भी कोई शक नहीं कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा अज के समय श्रोमणी अकाली दल के लिए काम कर रहे हैं। शब्द खरते खैर शब्दां चिट्ठियां पत्रां च ही रहे हैं, उवें वह जेल च है, परंतु श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्समैन तरह ही वह गल कर रहे। हुण जिस ढंग दे नाल सुखबीर सिंह बादल पहलां जिहड़ियां पंजाब दीआं जिमनी चोणां हुईआं ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kalon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: Sound Live and Cellular Point present AmiWare Live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo Ready Hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नूं जां चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुणन वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com जां www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं कनेक्ट करो उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7